0: ये सीबे चाला कर बो जुरुआ में पे सॉन्ग डंगले मुफो आदो जी के लाये
1: नेसे तो चेना शुगी
0: नो अने के लाये कुछ नो
1: नो शुदें जागो
0: लासो के लाये
2: ली कुंगम सा ली
3: निंगू
2: 宁宫是学过音呢，学过是学过音呢，是过么子啊？别急，别着急。妈的，给拉上这地，太当然了，啷啥学过的嘞？是地现代的领导，肯定不着急的。那是，那了，地给拉地的是吧？我跟新来是那边了。我印度，你看给这拉的，今天就做了。
3: 最近不上了，就说各地历史呀，的，哎，那个人家都心中有秘密的，多了跟哪能不错。
2: 是，
3: 他在那地基那里在那修那这一那，他就随便，阿罗亚随便送些的，随便便宜拿了。阿罗亚是也是等个，嗯，就叫这龙地新庄那边人家的，车站那边人家的，嗯，毛欧木兰的是为他，全一样的呀，那。
2: Future两年的都是都在他们这老了，才把他们这用别名的学费。那个了，今天嗯，现在他的啊，他们现在干啥呀？他就当我们这老了，跟那个。那是，那了，你那也他们这是不着拿了。
3: 那是，那是，他们是他。

ले मा पु मे बे जुम जे खा रे ले खांग सि ने दि खें जे सि चुम पु रे ओ नन ला ता यो दे बे